مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

तो हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थीं हराम कर दीं, और इस सबब से भी कि वो अक्सर खुदा के रास्ते से लोगों को रोकते थे।

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वो उनको उनका पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आरो इनकार और तकब्बुर किया उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा और वो खुदा के सिवा अपना हामी और मददगार न पाएंगे।

ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद।
2: सामईन, वर्गर्दानी के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान व इताअत और अदब व खुशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुँचाता और अल्लाह की राह से रोकता था, फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज करता और फख्र करता हुआ जाता था, गोया इसने कोई काबिले जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयात इसी शख्स के बारे में नाजिल हुई। ना इसने सदका दिया, ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। इस शख्स ने पहले दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आपको नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादिये मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। एक रवायत में मस्कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झिंझोड़ते हुए फरमाया, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हमाकत से बाज आने वाला ना था, बल्कि इसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचे सही मुस्लिम में है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदाराने कुरैश से अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है? जवाब दिया गया, हाँ। इसने कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने उसे इस हालत में देख लिया तो इसकी गर्दन रोंद दूंगा और इसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस जाम में चला कि आपकी गर्दन रोंद देगा, लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा, वो एड़ी की बल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हुकुम, तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, होलनाकियाँ हैं और पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज्व उचक लेते। सामईन, ये थी हमारी आज की नशिस्त। इंशाअल्लाह मज़ीद वर्क गर्दानी का सिलसिला हम आने वाली नशिस्त में जारी रखेंगे। इसके साथ कासिम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगबान।
0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ UCP की दुनिया FM 92.6।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain FM 92.6 UCP ki duniya, and this is Umay Malone from Faculty of Languages and Literature. Today we are going to discuss modern classroom and its challenges, and for this topic we have with us our brilliant and vibrant faculty members, Ms. Taiba Bint Mahmood and Ms. Huma Rauf. Ms. Taiba Bint Mahmood ke baare mein thoda sa kuch kehta chalun, to she has won to herself the best teacher award at university level, and she has surely made the department proud. And as for Ms. Huma Rauf, she is a diligent PhD scholar and has published her valuable research in renowned journals, and we welcome them both for today's session. Kaise hain aap dono?
1: Thank you so much, Umayma. Bilkul theek, aap bataye aap kaisi hain?
0: Allah ka shukr, aapke samne Allah ka shukr. Aap bataye aap kaisi hain? Taiba, aapse shuru karte hain. You have just won. Congratulations on your win.
1: Thank you so much.
0: And
1: thank you.
0: How does it feel? You know, university level pe best teacher ka award bag karna. It's a big, big win.
1: It is definitely a huge win. Alhamdulillah, obviously. Aur I was not expecting this at all, honestly. ठीक है. मैं बिल्कुल shock हो गई थी. और मजे की बात आपको बताऊँ कि when I received the official notification, तो in my mind I thought that I have won it at the faculty level. तो वो कोई आधा दिन गुजरने के बाद आई रेड द ईमेल अगेन, कहीं खुशी में कि अच्छा दोबारा से पढ़ती हूँ. एंड देन आई रेड द थिंग दैट यूनिवर्सिटी लेवल, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस
0: वुड बी अ प्लेजेंट शॉक.
1: एग्जैक्टली. सो दैट वाज रियली गुड, यू नो. ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, एंड आई मस्ट से दैट it feels great to be acknowledged. If you are putting in effort, so obviously it's like a reward, a true reward.
0: Definitely, many congratulations for that. तो फिर इसी से आपसे ही शुरू करते हैं कि best teacher का award आपने win तो किया है, आप ये भी बताइए कि biggest challenge आपको modern classroom में क्या लगता है?
1: अच्छा, वाकई ऑनेस्टली आई थिंक दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज अब टीचिंग में ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 6 years नाउ दैट आई एम विद UCP. और हर दफ़ा जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ईच यू नो सेशन सीम्स टू बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर आस टीचर्स एज वेल. जिस तरह से हमने पिछले सेमेस्टर को पढ़ाया हो, अगर आप सेम सब्जेक्ट भी बात कर लें, तो आई डोंट थिंक कि आप सेम मेथडोलॉजी सेम कॉन्टेंट को आप रिपीट कर सकते हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वाइल टीचिंग टूडेज अंडर ग्रेजुएट क्लासेज दैट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट लेवल एंड देयर अटेंशन स्पैन इज सो लो. दे आर हुक टू देयर फोन, सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप उनको उनके मोबाइल फोन से हटा के अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें.
0: आई डू हेट कॉलिंग टैगिंग देम विद जेन जी टाइटल, बट डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई इट. अब वो जेन जी भी जिधर हम लगा दें तो साथ ही वो आ जाता है कि आपका अटेंशन स्पैन इज रियली शॉर्ट. तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करते हुए ये कहती हूँ, फिर हम कैसे एज अ टीचर, हाउ कैन वी यू नो पुश देम और मोटिवेट देम to get into or indulge into in a pleasing way, definitely to studies and all that.
1: I think Umayma, jo hamara jo problem ya root cause banti hai na, solution bhi usi mein hi dhoondna padta hai. Like I mentioned that mobile phones are becoming the root cause of all the problems. So main phir koshish ye karti hu ke kuch na kuch tarika aisa nikalun classroom ke andar jisme wo thoda bahut mobile use kar sake, just to search the meaning of words, just to google some concept. ठीक है. एंड नाउ थैंक्स टू यू नो चैट जीपीटी, ऐसा भी अब तो मैंने क्लासरूम्स में किया है, क्योंकि आई नो दैट दे आर गोइंग टू टेक द इजी वे आउट, सो व्हाई नॉट गिव इट टू देम, राइट. सो अब तो मैंने एक दो असाइनमेंट्स और ऐसी क्लासरूम डिस्कशंस रखी जिसमें आई गिव देम द क्वेश्चन कि मैं उनको कहती हूँ ये लिख के दो तुम चैट जीपीटी को, ठीक है. और एंड दे डू दैट हैप्पीली ऑब्वियसली, एंड देन एग्जैक्टली द प्रॉम्प्ट्स वो हर कोई अपने अकॉर्डिंग दे रहा होता है. सो आई जस्ट नज देम इन दैट डायरेक्शन एंड आई आस्क देम कि ये इस तरह से लिख के दो एंड टेल मी. सो वो ये होता है कि फिर वी गेट अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट आंसर्स, मोस्टली अराउंड द सेम थीम्स एंड एग्जैक्टली वेयर आई वॉन्ट देम टू बी. तो फिर ये होता है कि उससे एक आप अच्छी डिस्कशन जनरेट कर लेते हो और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है.
0: दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया. हुमा, आपकी तरफ आते हैं एंड आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि आपके नज़दीक बिगेस्ट चैलेंज क्या है क्लासरूम्स के अंदर?
2: अच्छा जी, बिगेस्ट चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड व्हाट तैयबा सेड. शी राइटली मेंशन्ड दैट द अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स दीस डे, इट हैज़ रियली डिक्रीज्ड अ लॉट, राइट. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लास में इंगेज रखना एंड टू मेक श्योर दैट that they participate. You see, they have been learning this language from the day one. And this is what I tell to my students as well, that from the day one, from the playgroup, aap ye language seekh rahe hain, A, B, C, D, A, B, C, D, and then moving towards grammar, ke aapko grammatical rules bataye jaate hain. But where is the application? How you... to speak confidently in class, sabse bada jo ek masla aata hai wo mere khayal mein class mein yahi aata hai, that they don't feel like speaking. And even though when they are comfortable in speaking, they are unable to speak in front of the class. So this is the biggest challenge, I think, in today's world, especially in this modern era, jahan par mobile, social media, and these are the things. Aur students se zyada, I think, hume suffer karna padta hai in a way.
0: Definitely.
2: That they are not paying attention to what we say. There was a time jab ek waqt tha, 8 to 9 hum dramas dekhte the, jisme ek ghante mein break bhi aati thi. We knew ke 10 minute ki break hai, उसके बाद हमारा ड्रामा दोबारा शुरू होगा. वो एक घंटा शॉर्ट होके यूट्यूब पे आया, दैट्स 40 मिनट्स. और अभी भी उसमें जब 20 सेकंड्स की एड आती है तो माय किड्स दे आर ऑफ द व्यू, मामा स्किप करें इसको, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें. और उससे भी स्क्वीज होता होता अब वो रील्स पे आ गया है, राइट? सो आई थिंक जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वो भी एक तरह से हमें ऑपरेट कर रहा है. और ये चैलेंज जो है क्लासेस में हमें कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग अस इन अ वे. एंड बिलीव यू मी, सोशल मीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड, एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड इन अ वे कि फेसबुक, इंस्टा पे, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, इट्स देयर. So that's why this device has become your best friend, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, आपके मूड्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है.
0: आप दोनों ने मेंशन किया, AI का मेंशन किया, आपने चैट GPT का मेंशन किया. मैं दूसरा क्वेश्चन इसी से ही पूछती हूँ, इसी से रिलेटेड है. What do you feel about this technology? What do you feel that any such technological application or apparatus that is definitely we are bound to use it, क्योंकि जिस तरह से आपने बात किया कि ये हमें कंट्रोल कर रहा है, बाकी या कुछ भी है, इसके इस यूजेज को आप कैसे रेट करते हैं, एंड रेट इट इन द क्लास अमंग द स्टूडेंट्स, ये कैसे देखते हैं आप दोनों?
1: Mama, if I talk about my own opinion and experience, so शुरू में तो जैसे ही जब हम, आपको पता है, एक तहलका सा मच गया था जब हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, और फिर जी वो हमें पता चला कि वो सब ने ऑब्वियसली उसको एक एक दफ़ा तो ट्राई तो ज़रूर किया हम सब ने, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी, ठीक है, कि जी अच्छा ये क्या चीज़ है. और बड़ा मज़ा आया जब उसने आपसे बड़े एक यू नो एक ह्यूमन बींग की तरह बातचीत की, ये इस तरह से एग्जैक्टली यू नो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बात उसने की. आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेटर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स इवन, ठीक है,
3: बड़ा में बात की
1: सही इंग्लिश में, कंपैशनेट होके, ठीक है, वो पिक कर लेता है ना कि आप किस तरह का चाह रहे हो, ठीक है. सो द थिंग इज कि वो शुरू में एज टीचर्स, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तो वो ऑनेस्टली बहुत थ्रेटनिंग था हमारे लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर आवर कोर्सेज लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों में, चूँकि आप भी लिटरेचर की हैं, सो यू नो कि वो बहुत थेरेटिकल आंसर्स हमारे हमारी फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ. और वो हम जब बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे थे, हम उनको टास्क दे रहे थे जिनमें उनकी राइटिंग एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वॉज रिक्वायर्ड, तो वो हमें ChatGPT से कॉपी पेस्ट, यहाँ सो मच सो दैट यू नो फुल थीसिस इवन आई हर्ड दैट दे वर कॉपीड.
0: Robotic writing.
1: Exactly. So वो जो first phase था, that was really really you know threatening. लेकिन उसके बाद फिर ये एक phase आ गया जिसमें we realized कि there is no stopping it. आप इसको वो कबूतर की तरह आप आंखें नहीं बंद कर सकते इसके वो जो मिसाल है, ठीक है. सो वी हैड टू एम्ब्रेस इट, वी हैड टू फाइंड वेज टू लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ आर टीचिंग मेथडोलॉजीज एज वेल, एंड टू इनकॉर्पोरेट इन सच अ वे दैट लर्निंग कुड टेक प्लेस. तो फिर ये है कि जो लास्ट ईयर जिस तरह से गुजरा है उसके अंदर आई एम रियली ग्लैड दैट आवर फैकल्टी यू नो जम्प्ड ऑन दिस ट्रेंड एज वेल, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच इट कुड बी यूज्ड फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आप बच्चों को इसको यूज करने से रोक नहीं सकते, सो वाई नॉट यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे कि बच्चे उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो आपकी ही इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है.
0: अच्छा तैयबा, आई जस्ट यू नो रिक्वेस्ट कि हम इसको यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. वी विल कैच अप.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ki duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्लासरूम एंड इस चैलेंजेस के ऊपर. और मिस तैयबा से हम सवाल कर रहे थे कि भाई हाउ हैव यू इंटीग्रेटेड AI इन योर क्लासरूम्स. मिस तैयबा इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सुमा की तरफ आते हैं.
2: थैंक यू मायमा जी. हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब इट्स अ रियलिटी. AI इज अ रियलिटी एंड यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स इट, राइट? सो बेहतर यही है दैट वी नीड टू वी एज टीचर्स, वी एज यू नो एजुकेशनिस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस एज वेल, ऑफ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजीज एज वेल. सो देर आर डिफरेंट कोर्सेज, देर आर डिफरेंट platforms that help you with that. क्योंकि देखो एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई ना एकदम से, हमें भी तो नहीं पता था. तो टीचर्स ऑल्सो बिकम लर्नर्स इन दिस थिंग, ठीक है? सो अब जैसे मैं कोई कोर्स पढ़ाना शुरू करती हूँ तो उसमें मेरी हमें अब इस दफ़ा से ये प्रायोरिटी होती है कि मैं ये देख सकूँ कि मैं इसके अंदर AI का यूज़ किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक्स को इसके साथ कन्वर्ज कर सकती हूँ कि वो ज़्यादा यूज़फुल हो सके मेरे बच्चों के लिए भी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें ऑब्वियसली नई लगेंगी. थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए भी एज अ टीचर होगा कि आप भी अपनी टीचिंग मेथड्स में थोड़े से सेट हो जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम. के लेट से कुछ लोग स्लाइड्स यूज करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट बुक्स को रेफर करते हैं. सो आई थिंक AI का यूज़ भी ना इस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता ना हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी टीचिंग में. और अगर हम नहीं करें तो वो आप अपने स्टूडेंट्स को तो रोक नहीं पा रहे, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उस गैप को खुद ही से मिनिमाइज कर दें.

0: बिग क्लासरूम
1: ओह
0: साइजेस
1: यस
0: स्ट्रेंथ 35+ की होती है.
1: एग्जैक्टली
0: सो वो अगर हमें इस तरह से क्रिएटिव मेथड्स मिल जाएं टू असेस, वो आई थिंक कि वो तो बहुत ही अच्छी डोमेन बन जाएगी. और इसी तरह से हाउ टू यू नो डिज़ाइन योर असेसमेंट्स क्रिएटिवली, और इस तरह से कि बच्चों को AI आप यूज़ तो करवा रहे हैं लेकिन समहाउ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है और वो उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं. सो ये वाला पार्ट आई थिंक फॉर अ टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
1: वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स सेवा, थैंक यू सो मच. हुमा आपकी तरफ आते सेम क्वेश्चन कि हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग इट, यूजिंग इट, डू यू फाइंड इट गुड या बैड, आर यू अगेंस्ट इट, या कुछ भी ऐसे है जो आप AI के बारे में अपनी क्लासरूम्स के मतलब कुछ कहना चाहिए?
2: जी उमायमा, व्हेन वी टॉक अबाउट AI, बट आई मस्ट से इस कि अगर हम AI को अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो एज अ टीचर वी आर गोइंग टू फेल. यू सी AI इज द न्यू वर्ल्ड एंड बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपडेट करना है, एंड इफ वी डोंट अपडेट आर सेल्व्स तो देयर वुड बी अ बिग गैप बिटवीन आर स्टूडेंट्स एंड अस. एंड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू फॉर्म अ कनेक्शन विद आर स्टूडेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. और अगर हम वही पुराने जमाने की एक ट्रेडिशनल टीचिंग को लेके चलेंगे तो आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू टीच दैम वेल. सो द गुड थिंग इज टू गो विद द फ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल incorporate technology in your class, but as a teacher you have to intervene. ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल free hand दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी monitoring नहीं कर रहे. You need to see what they are up to, you need to see their potentials and then work on it. You see, we all got our potentials. Somebody is good in writing, somebody is good at speaking, मतलब हर बंदी की एक अपनी potential है, right? So when we talk about AI, AI is completely a new world. अब मैंने there was a research in 2019 जिसमें मैंने COVID के दौरान एक रिसर्च की थी that the challenges we faced during COVID-19 और उसमें टीचर्स के इंटरव्यू मैंने किए थे. बट टीचर्स सेड के टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ड्यूरिंग कोविड हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और देखिए, हमें तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना है ना. हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है. आफ्टर कोविड हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में. अब उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि द मैच्योर टीचर्स दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासेस. वी हैव टू अडेप्ट, वी नो इट वेल, राइट? सो द गुड थिंग इज कि आप लोग अपने आप को चेंज करते रहें, आप लोग अपने आप को इवॉल्व करते रहे फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर स्टूडेंट्स ग्रोथ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर हेयर फॉर आर स्टूडेंट्स. वी हैव टू थिंक अबाउट आर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड देन आर सेल्स. तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट. एंड बींग अ स्टूडेंट ऑफ PhD, आई सी माई स्टूडेंट्स एंड आई टेल देम कि जिस तरह से आप लोग बैठ के अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, वी हैव बीन इन द सेम फेस. अब जैसे आप एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, वो अपनी आईज रोल करके यूं ऐसे बैठ जाता है. सो आई टेल हिम कि मुझे पता है तुम्हें जवाब नहीं पता, एंड यू आर यू नो ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ मी. दीज आर द थिंग्स. और बींग अ PhD स्कॉलर, आई वुड लाइक टू से कि AI का यूज मैंने अपने थीसिस में भी किया है, बट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे. अब जैसे अगर हम चैट GPT का इस्तेमाल अपनी क्लास में करते हैं तो गिव देम अ टॉपिक, असाइन देम अ टॉपिक, टेल देम टू गूगल दिस टॉपिक. चैट GPT पे आप ये टॉपिक लिखें, आपके पास जो भी डिटेल्स आती हैं क्रिटिकली इवेल्युएटेड एंड देन आंसर द क्वेश्चन. दैट्स द थिंग विच आई डू इन माई क्लासरूम्स. और हमारे तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जो हमारा कोर्स पैक है वो एक बहुत मॉडर्न फॉर्मेट पे जो है वो बना हुआ है, राइट? उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि आई थिंक जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो सबसे बड़ी एक लैक है, जो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखाते तो हैं बट वी डोंट गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक वेयर दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स, जहां पर उनको अपनी पोटेंशियल का पता चले. और वो उसी सूरत में है जब आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं. सो आई रियली लाइक दिस कोर्स पैक इन अ वे कि ये स्टूडेंट्स को चांस देता है कि दे यू नो इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, दे प्रैक्टिकली डू इट एंड देन दे गो अहेड विद दैट थिंग.
1: थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल आंसर्स. और अब इसी से ही आगे लेके चलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं विद अदर क्वेश्चंस. यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya, aur hum baat kar rahe hain modern classrooms and the use of AI. अभी तक हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन बिल्ड की है विद तैयबा बिनते महमूद एंड हुमा रऊफ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और इतने लवली और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं रिगार्डिंग एआई एंड हाउ टू टेक क्लासरूम इन अ मॉडर्न सेटिंग इन अ मॉडर्न वे एंड हाउ टू मॉडर्नाइज योर सेल्फ विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इसके साथ मैं बिल्कुल लास्ट पे आऊँगी आप लोगों से बात करते हुए कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर दी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स मदर्स ऑफ आर स्टूडेंट्स. एक बहुत रूहानियत रिलेटेड है हमारा रोल और पेशा भी. इसी के बिना पे एक इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि आप अपने क्लासरूम्स में एज कोर्स एडवाइजर्स एज बैच एडवाइजर्स हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट्स इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ डू यू मोटिवेट देम, यू काउंसिल देम, और इन वॉट एवर वे यू शेप योर स्टूडेंट्स. तैयबा आप पे पहले आते हैं.
2: उमायमा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतना आइसोलेटेड क्लासरूम का माहौल हो गया है कि बच्चे उस तरह से, जो उमा ने भी बात की थी, तो आई फेल्ट रियली कनेक्टेड टू इट कि सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन डेवलप हो सके. जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो आई रिमेम्बर कि हमारे उन सब्जेक्ट्स के ज़्यादा अच्छे स्कोर्स और उनकी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती थी जब हमारे वो उन टीचर्स के साथ हमारे एक अच्छा से कनेक्शन, थोड़ा फ्रेंडली सा, जिनके साथ हम थोड़ा बॉन्ड कर सकते थे. उसके बरक्स अगर आप देखो कि वो जो टीचर्स बड़े अलूफ से रहते थे कि बस किताब उठाए आते थे, बिल्कुल ड्राई कोई बात नहीं की और यू नो वो चले गए, तो वो ना उनका सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का दिल करता था ना उनसे हम कोई क्वेश्चंस करते थे. तो वो वाली चीज़ मैंने हमेशा चूंकि एज अ स्टूडेंट बहुत डीपली फील की थी, तो मैं सोचती होती थी कि मैं जब टीचर बनूंगी ना यू नो तो मैंने नहीं करना ऐसे. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह I always try this. अब वो obviously एक के साथ तक होता है, वो तो मेरे स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर ये होती है कि टू ब्रेक द आइस विद देम. ठीक है, और वो एक इस चीज़ में एज हमें obviously ये जो हमारी ड्यूटीज़ हैं एज बैच एडवाइजर्स एंड कोर्स एडवाइजर्स, तो वो चूँकि वो भी एक यू नो वो तो मैंडेटरी भी हो गया कि आपको बच्चों के साथ मीटिंग्स करनी है, आपको उनसे पूछते रहना है इफ़ दे आर फेसिंग एनी इशूज़. सो आई रियलाइज दैट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. हम जो अब मॉडर्न क्लासरूम के टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स नहीं है, वो उनके काउंसलर्स भी हैं. क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एकेडमिक, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेड्स इस वजह से नहीं अफेक्ट हो रहे होते कि जी उन्होंने टेस्ट बुरा हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बिलीव यू मी कि बहुत ज़्यादा दिल एट टाइम्स ना हर्ट होता है ऐसे केसेस देखे कि ये छोटे छोटे ये टीन एजर्स ही हैं यू नो, और ये दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और बिल्कुल एडवांस स्टेजेस पे होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं. सो वो चूंकि यू नो मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न मसाइल भी हैं, हमारी एज पे यू नो वी नेवर न्यू कि डिप्रेशन भी कोई चीज होती है. ठीक है, तो लेकिन अब इट्स वेरी रियल क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज सो रैपिडली. ठीक है, राइट. तो मुझे ये लगता है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स बीइंग टीचर्स. और मैं अपनी क्लासेस में एक छोटा सा सेशन रखती होती हूँ थॉट ऑफ द डे के नाम से क्लास के स्टार्ट में, या अगर जैसे डबल लेक्चर्स होते हैं तो आई ट्राई के मिडल में रख लें कि वो छोटी सी एक ब्रेक भी आ जाती है यू नो पढ़ाई से. तो उसमें मैंने बच्चों को ये कहती हूँ कि इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर देन स्टडीज, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है. और अगर नहीं है तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू शेयर माई गोल्डन थॉट से दियो, ठीक है ना. तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आई लिटरली टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया या फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली, या ये कि वो हम एक जो आपको पता है सोशल मीडिया पर कितनी फॉल्स परसेप्शंस होती हैं कि जी बड़ी आइडिया लाइफ चल रही है. मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि यार प्लीज डोंट गेट योर सेल्फ डिसीव्ड बाई दिस थिंग कि वो परफेक्ट स्किन है, परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट यू नो लाइफ स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है. देन इवन यू नो जस्ट यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग financials, ठीक है. दिस वॉज माई सिक्स सेमेस्टर एंड आई थॉट कि दीज आर यू नो मैच्योर एंड एट सेमेस्टर से भी लाजमी आई टॉक अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू प्रोफेशनल लाइफ ना हो तो आपको इन रियलिटीज ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए. सो मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है स्टूडेंट्स को, कि आप उनके उनसे उनकी पढ़ाई के अलावा भी थोड़ी बहुत बातचीत करें ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें एंड देन दे ओपन अप टू यू इफ़ दे हैव एनी इश्यूज. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वो वाली स्टेज गुजर चुकी है तो हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं या फिर उनको सही डायरेक्शन में नाच कर सकते हैं.
1: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यू नो डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स द राइट, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दैट वी हैव विद अस. हुमा, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
3: मायमा, आई वुड से कि एक जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ फील करती हूँ और जिसमें मुझे बहुत अफसोस भी होता है वो ये आजकल एक जो परसेप्शन बन गया है ना यूथ के बारे में, जैसे हम जेन जी कहते हैं तो जेन जी में हमारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है. एम आई राइट?
1: बिल्कुल.
3: और जेन जी को अगर हम आज से 20 साल पहले अपने बारे में सोचें तो हम बहुत चेंज थे. Today, after 20 years, we have changed a lot. The world has changed a lot. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए और सबसे पहले हमें ये चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए कि जेन जी इज़ नॉट दैट बैड जितना हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है. जैसे अब मैंने बहुत से लोगों के कहते हुए सुना कि आजकल की बहुत तो बहुत पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है. कम ऑन, वो लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन उनको प्रोवाइड की गई है.
1: एग्जैक्टली.
3: और आजकल का जो मॉडर्न एरा है, एज तैयबा मेंशन्ड कि जो सोशल मीडिया पे हम एक आइडियलाइज लाइफ देखते हैं, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट एज वेल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मॉरल ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट. ओके जी, अब अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई थिंक मुझे अपने बचपन में किताबों में पढ़ी हुई कोई बात याद नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरी टीचर्स ने बातें कही थी वो याद है.
1: कितनी खूबसूरत बात की है.
3: और मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि वो फलां किताब में ये बात लिखी हुई थी. हमारी टीचर ने हमें एक बात ये बताई थी और वो हमें आज तक याद है. सो बिलीव यू मी, एज अ टीचर हमारा एक बहुत अहम रोल है हमारी जो सोसाइटी में, हमारा एक बहुत अहम किरदार है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से निभाना है. सबसे पहले तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस बबल. वी नीड टू, हमें इस चीज़ को कबूल करने की ज़रूरत है कि ये हमारी यूथ है, ये हमारे ही बच्चे हैं एंड वी हैव टू शेप देम. अब जिस स्टेज पे हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आकर अच्छाई और बुराई का तो उनको पता है. नाउ वी नीड टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो उनकी अपनी है और उनकी अपनी दुनिया में रहते हुए उनको मॉरेलिटी की तरफ लेके आना है. दैट्स द मेन थिंग जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. और ड्यूरिंग क्लासरूम आई सी मैनी स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं और दे आर अनएबल टू फोकस, दे आर अनएबल टू स्पीक फॉर देम सेल्व्स इवन. उसके लिए हमें ड्यूरिंग क्लासरूम जस्ट कीप टेलिंग देम अबाउट मोरेलिटी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दैट वी नीड टू टेल देम उनकी अपनी जो पोटेंशियल है उसके बारे में. व्हाट आर दे गुड एट, जस्ट नो देयर पोटेंशियल एंड देन टॉक अबाउट इट. दैट कैन बी आई थिंक द मेन थिंग. और एक चीज़ यहाँ पर आई वुड लाइक टू एड अ कोट ओवर हेयर. कोहली वंस सेड, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम. सो दिस इज़ बेसिकली लुकिंग ग्लास सेल्फ है. सोशल मीडिया के दौर में हमने प्रसीव अपने आप को वैसे ही किया हुआ है जैसा कि दुनिया हमें देख रही है. द रियल सेल्फ जो है, जो हमारी एक असल बीइंग है हमारे अंदर, आई थिंक इट हैज़ डेड समवेयर, इट हैज़ डाइड समवेयर. वी नीड टू वेक दैट अप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स देयर ओन आइडेंटिटी एंड देन दे वर्क ऑन देम सेल्व्स. अब जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज टू यू नो टीच माई लिटिल ब्रदर. सो अब वेन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वैल्यू इट. तो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं व्हाट इज योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर पोटेंशियल एंड देन यू सी दैट द वर्ल्ड इज योर्स. दैट्स द मेन थिंग एंड वी कैन डू इट बाय फॉर्मिंग यू नो इमोशनल कनेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से.
1: That has been a wonderful, wonderful session and discussion with Taiba and Huma. Thank you so much for your valuable insights and time to talk about these current and relevant issues to today's world. And I hope that we could carry this essence in our classrooms as well of counseling the students. students in the best of their shape and grooming them for a better tomorrow. Thank you so much. Aap sun rahe the UCP ki duniya FM 92.6 aur hum baat kar rahe the modern classroom aur is AI ke bare mein. Hum in future bhi we will try to bring up more content like this and hum phir hazir honge aapke paas. Sunte rahiye UCP ki duniya FM 92.6. This is Umaima Malone signing out. Take care.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: लाहौर नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 92.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

जी जनाब, दोबारा वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मुझे ये पता लगा तो ये एक बड़ा छूता तरीकाकार था, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सी खूबसूरती ये नजर आती है जो आजकल के आशिकों में कम कम पाई जाती है। जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद जमाना है, ऊपर से इंडियन फिल्मों ने, इंडियन ड्रामों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया नई नस्ल का। इसी 92.6 यूसीपी की दुनिया के चैनल के तवस्सुत से मैं अपने नौजवानों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा खुदारा, इंडियंस आपको पहले अपने ड्रामों की जद में लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी तहजीब का आदि करते चले जाते हैं और आपकी सकाफत से आपको दूर ले जाते हैं। सकाफत में जब अजनबियत आ जाए, याद रखिएगा, तो वो सकाफत अपनी नहीं रहती। खुदारा इस इंडियन वार से, इस इंडियन प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचाइए, और अगर बड़े भी मेरे सुनने वालों में शामिल हैं तो अपने बच्चों को खुदारा तरीके से रोकिए। सख्ती से रोकेंगे तो वो और ये शौक परवान चढ़ेगा। मैं आपको बता रहा था, पता चला कि वो टाइमिंग्स के बारे में इस तरीके से वो पैगाम पहुंचाते थे। उसके बाद मैंने देखा, एक दिन इत्तेफाक हुआ कि मैं जब उसको कहते हैं हाफ डे जुमा या हफ्ता, उस जमाने में हुआ करता था, स्कूल में हाफ डे होता था, इसको हम कहा करते थे आधी छुट्टी सारी, यानी हाफ डे में छुट्टी होती, बहुत खुशी का दिन होता था। उस दिन हम जो लड़के वाले होते थे जल्दी छतों पे आ जाते थे दोपहर के वक्त, खासतौर पे सर्दियों में, गर्मी में तो माया आने नहीं देती थी। अक्सर कहा करती थी कि तेरा रंग जो बिल्कुल स्याह हो गया है धूप में पतंगे उड़ा उड़ा, ना जाया कर ऊपर, तेरे मुंह पे कालक लग गई है। तो हम अक्सर कहा करते थे अगर पहले ही कालक लगी हो, कि पहले ही रंग स्याह हो, तो मजीद कालक क्या लगेगी। एनीवे, माओ के नजदीक तो हर कोई, आपको पता है ना, शहजादा ही होता है, ठीक है। तो उस दिन मैं दोपहर को ही, दोपहर के आने से पहले छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि दोनों ने इस छत पे जो मेरे घर के करीब थी, जहाँ पे भाई साहब जो थे, कि मैं नाम बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा, ताकि राज में रहे, इश्तियाक रहे, तो उन्होंने अपनी दीवार पे एक बड़ा सा सफेद कागज चस्पा कर रखा था। दूसरी तरफ छत पे वो मोहतरमा भी मौजूद थी, उन्होंने भी बड़ा सा कागज चस्पा कर रखा था, यानी लगा रखा था लेवी के साथ, सुरेश के साथ, जिसको आजकल अब रूहू कहते हैं, स्टिकिंग जो होता है, फ्लूड होता है, उस पे कलम के साथ साथ बड़ी बड़ा एक पैगाम लिख रहे थे। और जाहिर है दोपहर का वक्त था, दोनों अपने हाल में मगन थे। आपको पता है इश्क ना जात देखता है, ना वक्त देखता है, ना माहौल देखता है, अपने हाल में मगन होता है। लिहाजा दोनों बड़े बड़े पैगाम लिख रहे थे। और बाद में पता चला कि क्या था, उस छत पे सफेद कागज लगा के कलम के साथ जली हरूफ में ये लिखा जाता था कि कब, किस वक्त, किस दिन, कहाँ मिलना है। और आगे से लड़की की तरफ से अगर हाँ हो जाती थी तो जो भाई साहब थे उनके वारे न्यारे, उनके बाछें खिल जाती थी, लग जाता था, हंसते थे और गुनगुनाते थे, सीटियां बजाते थे, विस्लिंग करते थे, पता लगता था कि उनको कामयाबी हो गई। और बाद में पता चला जब हम भी थोड़े से बड़े हुए, जाहिर है हमें भी ये शौक चुराया होगा थोड़ा सा जरूर, वो तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, जाहिर है मैं उस्ताद हूँ और जिस मकाम पे हूँ, अगर मैंने अपनी कहानी बयान करनी शुरू कर दी तो हो सकता है मुझे यहाँ से छुट्टी करा दें। लिहाजा मैं उसी पे रहूंगा कि मैं जग बीती बयान करूंगा, आप बीती बयान नहीं करूंगा, ठीक है। तो पता चला जनाब कजन से, मल्लेदारों से, दुकानदारों से कि जी वो कहाँ मिलते थे, सबसे बड़ी जो मीटिंग ग्राउंड होती थी ना, मीटिंग प्लेस होता था, जो जाए मुलाकात होती थी, वो लाहौर का बागे जिना या शालामार बाग। क्योंकि अंदरूने शहर के रहने वालों से बागे जिना, जिसको लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं, वो नजदीक था, इसलिए ज्यादा वहाँ जाके मिला करते। और बड़े बड़े कहते हैं खूबसूरत तहाइफ के तबादले भी होते थे। तहाइफ के तबादले क्या है, चलें आपको भी दोस्तों बताता चलूं, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है अलग से। कहाँ कहाँ मैं आपको बयान करूँ, दुरून लाहौर की कहानियाँ इतनी ज्यादा है कि शायद मेरी उम्र कम पड़ जाए और ये मौजूद खत्म ना हो पाए। सो जनाब, मेरे रिकॉर्डर ने भी, जाहिर है मेरा रिमोट उनके हाथ में, उन्होंने मुझे कहा, और वाकई आपको पता है जैसे हम एक और प्रोग्राम भी करते हैं, मैं और वो जरानी बच्ची जो है नूर फातिमा, उसमें भी हम कहा करते हैं कि जब तक ये पूरा अमला, ये लोग ना हो और साथ इनके जो ऊपर दीन है, इनका अगर तावुन हासिल ना हो, इनका अगर मुस्बत इशारा ना हमें मयसर हो, तो ये प्रोग्राम कभी हवा की लहरों की जीनत बन ही नहीं सकता। लिहाजा मैं, समझिएगा, इसको यही इख्तिताम करते हैं। मकसद यही है कि आप आगे अंदाजा लगाइए कि बाज वाकयात में, बाज सिलसिलों में ये जो छत का इश्क था वो शादी पे भी मुंतज होता था। दोनों के खानदान आपस में मिलके
फैसला करते थे और दोनों मिल भी जाते थे। ये जो है सिलसिला, ये पहला मौजू, ये खत्म होता है। दूसरा मौजू फिर हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।

इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, अब बस, अब हमें और तुम्हें

0: तुम्हारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग, जाग जाग, पाकिस्तान जाग जाग।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अशरे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से जायद अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब व अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद।

भारत की लेजेंड गुलूकारा लता मंगेशकर ने जब गुलूकारी के मैदान में कदम रखा तो वो मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ कोर्स में गाया करती थी। वो सचमुच में इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी और इन्हें बड़ी फनकारा भी तस्लीम करती थी। एक बात तो तय है कि कुदरत ने जो आवाज और सुर मलका तरन्नुम नूरजहां को दिया वो किसी दूसरे के पास नहीं।

मैडम नूर जहाँ एक अहद थी, एक अदाकारा, एक इदारा जो दुनिया फानी से तो कुछ कर गई लेकिन नस्लों तक के सीखने को बहुत कुछ छोड़ गई। नूर जहाँ का शुमार इन फनकारों में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी, बल्कि तरन्नुम के गाय गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 9 वर्ष की उम्र में नूर जहाँ की आवाज़ ने पंजाबी मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने नूर जहाँ के लिए खसूसी तौर पर नातें, गजलें और लोक गीत कम्पोज किए। फिर नूर जहाँ का खानदान कलकत्ता मुंतकिल हो गया, जहाँ मारूफ गुलूकारा मुख्तार बेगम ने नूर जहाँ और उनकी दो बहनों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स को भी इनके नाम तजवीज किए। 1935 में उन्होंने पिंडी कोड़ी से अदाकारी का आगाज किया। इसके बाद फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी के साथ साथ कई गीतों को अपनी आवाज भी दी। 1937 में बनने वाली फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार अदा किया। फिर वो लाहौर चली आई और कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद वापस बम्बई चली गयी, जहाँ अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुरुकारी का सफर भी जारी रखा। वो कुछ अरसे बाद वापस चली गयी, सारी तवज्जो प्लेबैक से मिली।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरे बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain FM 92.6 UCP ki duniya, and this is Umay Malone from Faculty of Languages and Literature. Today we are going to discuss modern classroom and its challenges, and for this topic we have with us our brilliant and vibrant faculty members, Ms. Taiba Bint Mahmood and Ms. Huma Rauf. Ms. Taiba Bint Mahmood ke baare mein thoda sa kuch kehta chalun, to she has won to herself the best teacher award at university level, and she has surely made the department proud. And as for Ms. Huma Rauf, she is a diligent PhD scholar and has published her valuable research in renowned journals, and we welcome them both for today's session. Kaise hain aap dono?
1: थैंक यू सो मच उमायमा, बिल्कुल ठीक. आप बताएं, आप कैसी हैं?
0: अल्लाह का शुक्र आपके सामने, अल्लाह का शुक्र. आप बताइए आप कैसी हैं?
2: आप बताएं क्या हाल है.
0: तैयबा, आपसे शुरू करते हैं. यू हैव जस्ट वन, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर विन.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
0: हाउ डज इट फील, यू नो, यूनिवर्सिटी लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड बैग करना? इट्स अ बिग बिग विन.
1: इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज विन, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली. और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल ऑनेस्टली. ठीक है, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी. और मजे की बात आपको बताऊँ कि व्हेन आई रिसीव द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इन माई माइंड आई थॉट दैट आई हैव वॉन इट एट द फैकल्टी लेवल. तो वो कोई आधा दिन गुजरने के बाद आई रेड द ईमेल अगेन, कहीं खुशी में कि अच्छा दोबारा से पढ़ती हूँ. एंड देन आई रेड द थिंग दैट यूनिवर्सिटी लेवल. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दिस
0: वुड बी अ प्लेजेंट शॉक.
1: एग्जैक्टली. सो दैट वाज रियली गुड, यू नो. ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, एंड आई मस्ट से दैट it feels great to be acknowledged. If you are putting in effort, so obviously it's like a reward, a true reward.
0: Definitely, many congratulations for that. तो फिर इसी से आपसे ही शुरू करते हैं कि बेस्ट टीचर का अवार्ड आपने विन तो किया है, अब आप ये भी बताइए कि बिगेस्ट चैलेंज आपको मॉडर्न क्लासरूम में क्या लगता है?
1: अच्छा, वाकई ऑनेस्टली आई थिंक दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज अब टीचिंग में ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 6 years नाउ दैट आई एम विद UCP. और हर दफ़ा जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो ईच यू नो सेशन सीम्स टू बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर आस टीचर्स एज वेल. जिस तरह से हमने पिछले सेमेस्टर को पढ़ाया हो, अगर आप सेम सब्जेक्ट भी बात कर लें, तो आई डोंट थिंक कि आप सेम मेथडोलॉजी सेम कॉन्टेंट को आप रिपीट कर सकते हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वाइल टीचिंग टूडेज अंडर ग्रेजुएट क्लास इज दैट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट लेवल, एंड देयर अटेंशन स्पैन इज सो लो. दे आर हुक टू देयर फोन, सो यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप उनको उनके मोबाइल फोन से हटा के अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें.
0: आई डू हेट कॉलिंग टैगिंग देम विद जेन जी टाइटल, बट डेफिनेटली आई कैन नॉट डिनाई इट. अब वो जेन जी भी जिधर हम लगा दें तो साथ ही वो आ जाता है कि आपका अटेंशन स्पैन इज रियली शॉर्ट. तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करते हुए ये कहती हूँ, फिर हम क्या कैसे एज अ टीचर, हाउ कैन वी यू नो पुश देम और मोटिवेट देम to get into or indulge into in a pleasing way, definitely to studies and all that.
1: I think Umayma, jo hamara jo problem ya root cause banti hai na, solution bhi usi mein hi dhoondna padta hai. Like I mentioned that mobile phones are becoming the root cause of all the problems, so main phir koshish ye karti hu ke kuch na kuch tarika aisa nikalun classroom ke andar jisme wo thoda bahut mobile use kar sake, just to search the meaning of words, just to google some concept. ठीक है, and now thanks to you know ChatGPT, ऐसा भी अब तो मैंने classrooms में किया है, क्योंकि I know that they are going to take the easy way out, so why not give it to them, right? So अब तो मैंने एक दो assignments और ऐसी classroom discussions रखी जिसमें I give them the question कि मैं उनको कहती हूँ ये लिख के दो तुम ChatGPT को, ठीक है, और and they do that happily obviously, and then exactly the prompts वो हर कोई अपने according दे रहा होता है, so I just nudge them in that direction and I ask them कि ये इस तरह से लिख के दो and tell me, so वो ये होता है कि फिर we get a lot of you know different answers, mostly around the same themes or and exactly where I want them to be. तो फिर ये होता है कि उससे एक आप अच्छी discussion generate कर लेते हो और understanding हो जाती है.
0: This is a wonderful idea. Huma, आपकी तरफ आते हैं and I ask you the same question कि आपके नज़दीक biggest challenge क्या है classrooms के अंदर?
3: अच्छा जी, biggest challenge according to me, I would like to extend what Taiba said. She rightly mentioned that the attention span of students these days, it has really decreased a lot, right? And it is very difficult for me के students जो हैं उनको class में engaged रखना and to make sure that that they participate. You see, they have been learning this language from the day one. And this is what I tell to my students as well, that from the day one, from the playgroup, aap ye language seekh rahe hain, A, B, C, D, A, B, C, D, and then moving towards grammar, ke aapko grammatical rules bataye jaate hain. But where is the application? How you to speak confidently in class, sabse bada jo ek masla aata hai, wo mere khayal mein class mein yehi aata hai, that they don't feel like speaking. And even though when they are comfortable in speaking, they are unable to speak in front of the class. So this is the biggest challenge, I think, in today's world, especially in this modern era, jahan par mobile, social media, and these are the things. Aur students se zyada, I think, hume suffer karna padta hai in a way.
0: Definitely.
3: That they are not paying attention to what we say. There was a time jab ek waqt tha, 8 to 9 hum dramas dekhte the, jisme ek ghante mein break bhi aati thi. We knew ke 10 minute ki break hai, उसके बाद हमारा ड्रामा दोबारा शुरू होगा. वो एक घंटा शॉर्ट होके यूट्यूब पे आया, दैट्स 40 मिनट्स. और अभी भी उसमें जब 20 सेकंड्स की एड आती है तो माय किड्स दे आर ऑफ द व्यू, मामा स्किप करें इसको, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें. और उससे भी स्क्वीज होता होता अब वो रील्स पे आ गया है, राइट. सो आई थिंक जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वो भी एक तरह से हमें ऑपरेट कर रहा है.
0: डेफिनेटली.
3: और ये चैलेंज जो है क्लासेस में हमें कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग अस इन अ वे. एंड बिलीव यू मी, सोशल मीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड, एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड इन अ वे कि फेसबुक, इंस्टा पे, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, इट्स देयर. So that's why this device has become your best friend, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, आपके मूड्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है.
0: आप दोनों ने मेंशन किया, AI का मेंशन किया, आपने चैट GPT का मेंशन किया. मैं दूसरा क्वेश्चन इसी से ही पूछती हूँ, इसी से रिलेटेड है. What do you feel about this technology? What do you feel that any such technological application or apparatus that is definitely we are bound to use it, क्योंकि जिस तरह से आपने बात किया कि ये हमें कंट्रोल कर रहा है, बाकी ये कुछ भी है, इसके इस यूजेज को आप कैसे रेट करते हैं, एंड रेट इट इन द क्लास अमंग द स्टूडेंट्स, ये कैसे देखते हैं आप दोनों?
1: Umayma, if I talk about my own opinion and experience, so शुरू में तो जैसे ही जब हम, आपको पता है, एक तहलका सा मच गया था जब हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, और फिर जी वो हमें पता चला कि वो सब ने ऑब्वियसली उसको एक एक दफ़ा तो ट्राई तो ज़रूर किया हम सब ने, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी, ठीक है, कि जी अच्छा ये क्या चीज़ है. और बड़ा मज़ा आया जब उसने आपसे बड़े एक यू नो एक ह्यूमन बींग की तरह बातचीत की, ये इस तरह से एग्जैक्टली यू नो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह बात उसने की. आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेटर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स इवन, ठीक है,
4: बड़ा में बात की
1: सही इंग्लिश में, कंपैशनेट होके, ठीक है, वो पिक कर लेता है ना कि आप किस तरह का चाह रहे हो, ठीक है. सो द थिंग इज कि वो शुरू में एज टीचर्स, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ तो वो ऑनेस्टली बहुत थ्रेटनिंग था हमारे लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर आवर कोर्सेज लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर दोनों में, चूँकि आप भी लिटरेचर की हैं, सो यू नो कि वो बहुत थियोरेटिकल आंसर्स हमारे हमारी फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ. और वो हम जब बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे थे, हम उनको टास्क दे रहे थे जिनमें उनकी राइटिंग एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वॉज रिक्वायर्ड, तो वो हमें ChatGPT से कॉपी पेस्ट, यहाँ सो मच सो दैट यू नो फुल थीसिस इवन आई हर्ड दैट दे वर कॉपीड.
0: Robotic writing.
1: Exactly. So जो first phase था, that was really really you know threatening. लेकिन उसके बाद फिर ये एक phase आ गया जिसमें we realized कि there is no stopping it. आप इसको वो कबूतर की तरह आप आंखें नहीं बंद कर सकते इसके इसके वो जो मिसाल है, ठीक है. सो वी हैड टू एम्ब्रेस इट, वी हैड टू फाइंड वेज टू लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ आर टीचिंग मेथडोलॉजीज एज वेल, एंड टू इनकॉर्पोरेट इन सच अ वे दैट लर्निंग कुड टेक प्लेस. तो फिर ये है कि जो लास्ट ईयर जिस तरह से गुजरा है उसके अंदर आई एम रियली ग्लैड दैट आवर फैकल्टी यू नो जम्प्ड ऑन दिस ट्रेंड एज वेल, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच इट कुड बी यूज्ड फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आप बच्चों को इसको यूज करने से रोक नहीं सकते, सो वाई नॉट यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे कि बच्चे उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो आपकी ही इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है.
0: अच्छा तैयबा, आई जस्ट यू नो रिक्वेस्ट कि हम इसको यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहे हैं और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. वी विल कैच अप.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्लासरूम एंड इस चैलेंजेस के ऊपर. और मिस तैयबा से हम सवाल कर रहे थे कि भाई हाउ हैव यू इंटीग्रेटेड AI इन योर क्लासरूम्स. मिस तैयबा इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सुमा की तरफ आते हैं.
2: थैंक यू मायमा जी. हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब इट्स अ रियलिटी. AI इज अ रियलिटी एंड यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट, राइट? सो बेहतर यही है दैट वी नीड टू वी एज टीचर्स, वी एज यू नो educationists, we need to understand that this is a part of our lives and it should be a part of our learning process as well, of our teaching methodologies as well. So there are different courses, there are different platforms that help you with that. Because dekho ek bilkul nayi cheez aa gayi na ekdam se, hame bhi to nahi pata tha. So teachers also become learners in this thing, theek hai? So ab jaise main koi course padhana shuru karti hu to usme meri hame ab is tarah se ye priority hoti hai ki main

0: रोक नहीं पा रहे तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उस गैप को खुद ही से ही मिनिमाइज कर दें. ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है, मेरी यही अप्रोच है अभी तक कि कोर्सेज मैंने एक दो देखे ऑनलाइन जो कि मैंने किए. एक लम्स का भी था उमायमा, मैंने आपके साथ ही वो फ्यूचर एड्स समिट हम लोगों ने अटेंड किया था. तो यू नो उसमें ये AI को उन्होंने बहुत ज्यादा दे टॉक एग्जैक्टली, तो उसी में वो उन्होंने एक कोर्सेज थे लम्स एक्स की तरफ से. सो उसमें वो AI का था कि दे यू नो गिव यू अ बेसिक आइडिया, और मुझे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दैट यू कैन यूज इट फॉर असेसमेंट एज वेल. तो जो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट वी हैव यू नो बिग क्लासरूम साइजेस, स्ट्रेंथ 35 प्लस की होती है. सो वो अगर हमें इस तरह से क्रिएटिव मेथड्स मिल जाएं टू असेस, वो आई थिंक वो तो बहुत ही अच्छी डोमेन बन जाएगी. और इसी तरह से हाउ टू यू नो डिज़ाइन योर असेसमेंट्स क्रिएटिवली, और इस तरह से कि बच्चों को AI आप यूज़ तो करवा रहे हैं लेकिन सम हाउ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही हो और वो उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं. सो ये वाला पार्ट आई थिंक फॉर अ टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
1: वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स. थैंक यू सो मच. हुमा आपकी तरफ आते सेम क्वेश्चन कि हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग इट, यूजिंग इट, डू यू फाइंड इट गुड या बैड, आर यू अगेंस्ट इट, या कुछ भी ऐसे है जो आप AI के बारे में अपनी क्लासरूम्स के मतलब कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी उमायमा, व्हेन वी टॉक अबाउट AI, व्हाट आई मस्ट से इज कि अगर हम AI को अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो एज अ टीचर वी आर गोइंग टू फेल. यू सी AI इज द न्यू वर्ल्ड एंड बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपडेट करना है, एंड इफ वी डोंट अपडेट आवर सेल्व्स तो देयर वुड बी अ बिग गैप बिटवीन आवर स्टूडेंट्स एंड अस. एंड the first thing we need to do is to form a connection with our students, a strong connection. Aur agar hum wahi purane zamane ki ek traditional teaching ko leke chalenge to I don't think we would be able to teach them well. So the good thing is to go with the flow, first of all incorporate technology in your class. But as a teacher you have to intervene. aisa nahi hai ki aap unko bilkul free hand de rahe hain, aisa bilkul bhi nahi hai ki aap unki monitoring nahi kar rahe. You need to see what they are up to, you need to see their potentials and then work on it. You see, we all got our potentials. Somebody is good in writing, somebody is good at speaking, matlab har bandi ki ek apni potential hai, right? So when we talk about AI, AI is completely a new world. अब मैंने there was a research in 2019 जिसमें मैंने COVID के दौरान एक research की थी that the challenges we faced during COVID-19 और उसमें teachers के interview मैंने किए थे. What teachers said के technology को use करना during COVID हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और देखिए हमें तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना है ना. हम online भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है. आफ्टर कोविड हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में. अब उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि द मैच्योर टीचर्स दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन देयर क्लासेस. वी हैव टू अडेप्ट, वी नो इट वेल, राइट? सो द गुड थिंग इज कि आप लोग अपने आप को चेंज करते रहें, आप लोग अपने आप को इवॉल्व करते रहें फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर स्टूडेंट्स ग्रोथ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर हेयर फॉर आर स्टूडेंट्स. वी हैव टू थिंक अबाउट आर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड देन आर सेल्व्स. तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो देट वुड बी रियली डिफिकल्ट. एंड बींग अ स्टूडेंट ऑफ PhD, आई सी माई स्टूडेंट्स एंड आई टेल देम कि जिस तरह से आप लोग बैठ के अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, वी हैव बीन इन द सेम फेज. अब जैसे आप एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं वो अपनी आईज रोल करके यूं ऐसे बैठ जाता है. सो आई टेल हिम कि मुझे पता है तुम्हें जवाब नहीं पता एंड यू आर यू नो ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ मी. दीज आर द थिंग्स. और बींग अ PhD स्कॉलर आई वुड लाइक टू से कि AI का यूज मैंने अपने थीसिस में भी किया है, बट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे. अब जैसे अगर हम चैट GPT का इस्तेमाल अपनी क्लास में करते हैं तो गिव देम अ टॉपिक, असाइन देम अ टॉपिक, टेल देम टू गूगल दिस टॉपिक. चैट GPT पे आप ये टॉपिक लिखें, आपके पास जो भी डिटेल्स आती हैं क्रिटिकली इवेल्युएट इट एंड देन आंसर द क्वेश्चन. दैट्स द थिंग विच आई डू इन माई क्लासरूम. और हमारे तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जो हमारा कोर्स पैक है वो एक बहुत मॉडर्न फॉर्मेट पे जो है वो बना हुआ है, राइट? उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि आई थिंक जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेज हैं उसमें जो सबसे बड़ी एक लैक है जो एक

0: बहुत बड़ा गैप आ रहा है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखाते तो हैं बट वी डोंट गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक वेयर दे एक्सप्लोर देमसेल्व्स, जहां पर उनको अपनी पोटेंशियल का पता चले. और वो उसी सूरत में है जब आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं. सो आई रियली लाइक दिस कोर्स पैक इन अ वे कि ये स्टूडेंट्स को चांस देता है कि दे यू नो इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, दे प्रैक्टिकली डू इट एंड देन दे गो अहेड विद दैट थिंग.
1: थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल आंसर्स. और अब इसी से ही आगे लेके चलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इससे पहले एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं विद अदर क्वेश्चंस. यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCB की दुनिया. स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya, aur hum baat kar rahe hain modern classrooms and the use of AI. अभी तक हमने बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन बिल्ड की है विद तैयबा बिनत महमूद एंड हुमा रऊ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और इतने लवली और वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हैं रिगार्डिंग एआई एंड हाउ टू टेक क्लासरूम इन अ मॉडर्न सेटिंग इन अ मॉडर्न वे एंड हाउ टू मॉडर्नाइज योर सेल्फ विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इसके साथ मैं बिल्कुल लास्ट पे आऊँगी आप लोगों से बात करते हुए कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर दी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स मदर्स ऑफ आर स्टूडेंट्स. एक बहुत रूहानियत रिलेटेड है हमारा रोल और पेशा भी. इसी के बिना पे एक इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है कि आप अपने क्लासरूम्स में एज कोर्स एडवाइजर्स एज बैच एडवाइजर्स हाउ डू यू हेल्प योर स्टूडेंट्स इन देयर कैरेक्टर बिल्डिंग, हाउ डू यू मोटिवेट देम, यू काउंसिल देम, और इन वॉट एवर वे यू शेप योर स्टूडेंट्स. तो आप पे पहले आते हैं.
2: उमायमा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतना आइसोलेटेड क्लासरूम का माहौल हो गया है कि बच्चे उस तरह से, जो उमा ने भी बात की थी, तो आई फेल्ट रियली कनेक्टेड टू इट कि सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन डेवलप हो सके. जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे तो आई रिमेम्बर कि हमारे उन सब्जेक्ट्स के ज़्यादा अच्छे स्कोर्स और उनकी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती थी जब हमारे वो उन टीचर्स के साथ हमारे एक अच्छा से कनेक्शन, थोड़ा फ्रेंडली सा, जिनके साथ हम थोड़ा बॉन्ड कर सकते थे. उसके बरक्स अगर आप देखो कि वो जो टीचर्स बड़े अलूफ से रहते थे कि बस किताब उठाए आते थे, बिल्कुल ड्राई कोई बात नहीं की और यू नो वो चले गए, तो वो ना उनका सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का दिल करता था ना उनसे हम कोई क्वेश्चंस करते थे. तो वो वाली चीज़ मैंने हमेशा चूंकि एज अ स्टूडेंट बहुत डीपली फील की थी, तो मैं सोचती होती थी कि मैं जब टीचर बनूंगी ना यू नो तो मैंने नहीं करना ऐसे. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह I always try this. अब वो obviously किस हद तक होता है वो तो मेरे students ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर ये होती है कि to break the ice with them, ठीक है. और वो एक इस चीज़ में एज हमें obviously ये जो हमारी duties हैं as batch advisors and course advisors, तो वो चूँकि वो भी एक you know वो तो mandatory भी हो गया कि आपको बच्चों के साथ meetings करनी है, आपको उनसे पूछते रहना है if they are facing any issues. So I realize that this is really important. हम जो अब modern क्लासरूम के टीचर्स हैं वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर्स नहीं है, वो उनके काउंसलर्स भी हैं. क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एकेडमिक, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेड्स इस वजह से नहीं अफेक्ट हो रहे होते कि जी उन्होंने टेस्ट बुरा हो गया, मार्क्स अच्छे नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बिलीव यू मी कि बहुत ज़्यादा दिल एट टाइम्स ना हर्ट होता है ऐसे केसेस देखे कि ये छोटे छोटे ये टीन एजर्स ही हैं यू नो, और ये दे आर सफरिंग फ्राम डिप्रेशन और बिल्कुल एडवांस स्टेजेस पे होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं. सो वो चूँकि यू नो मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न मसाइल भी हैं हमारी एज पे, यू नो वी नेवर न्यू कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है. तो लेकिन अब इट्स वेरी रियल क्योंकि द वर्ल्ड हैज चेंज सो रैपिडली, ठीक है, राइट. तो मुझे ये लगता है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स बीइंग टीचर्स. और मैं अपनी क्लासेस में एक छोटा सा सेशन रखती होती हूँ थॉट ऑफ द डे के नाम से क्लास के स्टार्ट में, या अगर जैसे डबल लेक्चर्स होते हैं तो आई ट्राई के मिडल में रख लें कि वो छोटी सी एक ब्रेक भी आ जाती है यू नो पढ़ाई से. तो उसमें मैंने बच्चों को ये कहती हूँ कि इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अदर देन स्टडीज, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है. और अगर नहीं है तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि ओके आई एम गोइंग टू शेयर माई गोल्डन थॉट्स विद यू, ठीक है ना. तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आई लिटरली टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग दैट कम्स टू माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया या फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली, या ये कि वो हम एक जो आपको पता है सोशल मीडिया पर कितनी फॉल्स परसेप्शन होती हैं कि जी बड़ी आइडिया लाइफ चल रही है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि यार प्लीज डोंट गेट योर सेल्फ डिसीव्ड बाई दिस थिंग कि वो परफेक्ट स्किन है, परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट यू नो लाइफ स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है. देन इवन यू नो जस्ट यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग फाइनेंस financials, ठीक है. दिस वॉज माई सिक्स्थ सेमेस्टर एंड आई थॉट कि दीज आर यू नो मैच्योर एंड एट सेमेस्टर से भी लाजमी आई टॉक अबाउट दिस कि यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू प्रोफेशनल लाइफ ना हो तो आपको इन रियलिटीज ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए. सो मुझे ये लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है स्टूडेंट्स को, कि आप उनके उनसे उनकी पढ़ाई के अलावा भी थोड़ी बहुत बातचीत करें ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें एंड देन दे ओपन अप टू यू इफ़ दे हैव एनी इश्यूज. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वो वाली स्टेज गुजर चुकी है तो हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं या फिर उनको सही डायरेक्शन में नाच कर सकते हैं.
1: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यू नो डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स द राइट, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दैट वी हैव विद अस. हुमा, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
3: मायमा, आई वुड से कि एक जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ फील करती हूँ और जिसमें मुझे बहुत अफसोस भी होता है, वो ये आजकल एक जो परसेप्शन बन गया है ना यूथ के बारे में, जैसे हम जेन जी कहते हैं तो जेन जी में हमारी एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है. एम आई राइट?
1: बिल्कुल.
3: और जेन जी को अगर हम आज से 20 साल पहले अपने बारे में सोचें तो हम बहुत चेंज थे. Today, after 20 years, we have changed a lot. The world has changed a lot. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए और सबसे पहले हमें ये चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए कि जेन जी इज़ नॉट दैट बैड जितना हमने कॉन्सेप्ट कर लिया हुआ है. जैसे अब मैंने बहुत से लोगों के कहते हुए सुना कि आजकल की बहुत तो बहुत पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है. कम ऑन, वो लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डायरेक्शन उनको प्रोवाइड की गई है.
1: एग्जैक्टली.
3: और आजकल का जो मॉडर्न एरा है, एज तैयबा मेंशनड कि जो सोशल मीडिया पे हम एक आइडियलाइज लाइफ देखते हैं, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट एज वेल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मॉरल ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट. ओके जी, अब अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई थिंक मुझे अपने बचपन में किताबों में पढ़ी हुई कोई बात याद नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरी टीचर्स ने बातें कही थी वो याद है.
1: इतनी खूबसूरत बात की है.
3: और मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि वो फलां किताब में ये बात लिखी हुई थी. हमारी टीचर ने हमें एक बात ये बताई थी और वो हमें आज तक याद है. सो बिलीव यू मी, एज अ टीचर हमारा एक बहुत अहम रोल है हमारी जो सोसाइटी में, हमारा एक बहुत अहम किरदार है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से निभाना है. सबसे पहले तो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस बबल. वी नीड टू, हमें इस चीज़ को कबूल करने की ज़रूरत है कि ये हमारी यूथ है, ये हमारे ही बच्चे हैं एंड वी हैव टू शेप देम. अब जिस स्टेज पे हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आकर अच्छाई और बुराई का तो उनको पता है. नाउ वी नीड टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो उनकी अपनी है और उनकी अपनी दुनिया में रहते हुए उनको मॉरेलिटी की तरफ लेके आना है. दैट्स द मेन थिंग जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. और ड्यूरिंग क्लासरूम आई सी मैनी स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके डिफरेंट चीज़ें हैं और दे आर अनएबल टू फोकस, दे आर अनएबल टू स्पीक फॉर देम सेल्व्स इवन. उसके लिए हमें ड्यूरिंग क्लासरूम जस्ट कीप टेलिंग देम अबाउट मोरेलिटी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दैट वी नीड टू टेल देम उनकी अपनी जो पोटेंशियल है उसके बारे में, व्हाट आर दे गुड एट. जस्ट नो देयर पोटेंशियल एंड देन टॉक अबाउट इट. दैट कैन बी आई थिंक द मेन थिंग. और एक चीज़ यहाँ पर आई वुड लाइक टू एड अ कोट ओवर हेयर. कोहली वंस सेड, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम. सो दिस इज बेसिकली लुकिंग ग्लास सेल्फ है. सोशल मीडिया के दौर में हमने प्रसीव अपने आप को वैसे ही किया हुआ है जैसा कि दुनिया हमें देख रही है. द रियल सेल्फ जो है, जो हमारी एक असल बीइंग है हमारे अंदर, आई थिंक इट हैज डेड समवेयर, इट हैज डाइड समवेयर. वी नीड टू वेक दैट अप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स देयर ओन आइडेंटिटी एंड देन दे वर्क ऑन देम सेल्व्स. अब जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ, आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज टू यू नो टीच माई लिटिल ब्रदर. सो अब वेन आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई रियली वैल्यू इट. तो स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताएं व्हाट इज योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर पोटेंशियल एंड देन यू सी दैट द वर्ल्ड इज योर्स. दैट्स द मेन थिंग एंड वी कैन डू इट बाय फॉर्मिंग यू नो इमोशनल कनेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट से.
1: That has been a wonderful, wonderful session and discussion with Taiba and Huma. Thank you so much for your valuable insights and time to talk about these current and relevant issues to today's world. And I hope that we could carry this essence in our classrooms as well, of counseling the students in the best of their shape and grooming them for a better tomorrow. Thank you so much. Aap sun rahe the UCP ki duniya FM 92.6 aur hum baat kar rahe the modern classroom aur AI ke bare mein. Hum in فیوچر بھی وی ول ٹرائی ٹو برنگ اپ مور کانٹینٹ لائک دس اینڈ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس. سنتے رہیے یو سی پی کی دنیا FM 92.6. دس از مائی مائلون سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6،

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

सुरौर तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: अगर कभी मेरी याद आए.
1: यू आर ऑफ. टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.

0: 1.6 UCB Dunia.
1: Up Sundrahe Hai University of Central Punjab FM 90.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

के सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुरौरताल
1: सुरौरताल
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन
1: मस्ती के पास
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।